करती है। ये तूफान तेज हवाएं भी लाएगा। पेशगोई की गई है कि मंगल के रोज तोहोकू और कांतो कोशिन में ज्यादा से ज्यादा 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मिट्टी के तोदे गिरने, नशेबी इलाकों में सैलाब, दरियाओं में तुगयानी व सैलाब, तेज हवा के झक्कड़ों और बुलंद लहरों से चौंका न रहा जाए। उसने ये भी कहा है कि आसमानी बिजली गिर सकती है और आंधी जैसी तेज हवाएं चल सकती हैं। मस्कुरा तूफान मगरिब की तरफ एक गैर मामूली रुख इख्तियार कर रहा है। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि इस तूफान के रास्ते के पेश नज़र ये हवा की गैर मामूली नकल व हरकत का सबब बन सकता है और खानतो और तोहुक के साहिलों पर अचानक ऊंची लहरों का उठना मुमकिन है। जापान के करीब आने वाले तूफान मगरिब से चलने वाली मुस्तकिल गालिब हवाओं के धकेलने की वजह से उमूमन मगरिब से मशिक की तरफ बढ़ते हैं। जुनूब मगरबी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में एक ताकतवर जलजला आने के 2 हफ्ते बाद भी 6,000 से ज्यादा लोग ताहाल इनखलाई मराकज में हैं। 28 जुलाई को आने वाले जलजले ने कुमामोतो के कुछ इलाकों को हिलाकर रख दिया था। इस जलजले का इर्तियाज 7 था, जो जापानी जलजला पैमा पर बुलंद तरीन सतह है। पीर के रोज तक मस्कुरा जलजले से 39 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी थी, जिनमें इस आफत से मुतालिका मुश्तबा हलाकतें भी शामिल हैं। इस जलजले से 22,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 699 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। यासुशिरो शहर, उकी शहर और हिकावा कस्बे में तकरीबन 34,000 घरानों के लिए पानी की फराहमी ताहाल मुनक़ता है। तवक्को है कि तमाम इलाकों में रवा माह के आखिर तक फराहमी बहाल हो जाएगी। NHK के एक राय अम्मा सर्वे से पता चला है कि जापानी वज़ीर आज़म ताकाइची सनाई की काबीना की हिमायत की शरह गुज़श्ता माह के मुकाबले में 5 पॉइंट्स कम होकर 53% हो गई है, जो गुज़श्ता साल काबीना की तश्कील के बाद से हिमायत की कमतरीन शरह है। अदम हिमायत की शरह 6 पॉइंट्स बढ़कर 33% हो गई है। NHK ने जुमे से इतवार तक टेलीफोनिक सर्वे किया। 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के 2,925 अफराद से बिलर तरतीब राब्ता किया गया, जिनमें से 1,205 अफराद ने जवाब दिया। सर्वे में 28 जुलाई को जापान के जुनूब मगरबी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए बड़े जलजले के बारे में हुकूमती रद्द अमल से मुतालिक भी पूछा गया। 11% ने कहा कि वो हुकूमती इकदाम को बहुत ज्यादा सराहते हैं, जबकि 56% ने कहा कि वो किसी हद तक इन्हें सराहते हैं। 21% ने कहा कि वो इन इकदाम को ज्यादा नहीं सराहते, जबकि 6% ने कहा कि वो इन्हें बिल्कुल नहीं सराहते। काबीना ने हाल ही में हुकूमत के अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खुराक पर सारिफ टैक्स की शरह को कम करके 1% करने के मंसूबे की मंजूरी दी है। कम और दरमियानी आमदनी वाले अफराद को माली फवायद भी फराहम किए जाएंगे, ताकि खुराक पर उनके टैक्स का बोझ अमली तौर पर 0 हो जाए। मजमू तौर पर 49% ने कहा कि वो इस पॉलिसी की हिमायत करते हैं, 39% ने कहा कि वो इसकी मुखालफत करते हैं और 12% ने कहा कि उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पार्लियामान ने शाही खानदान के अरकान की तादाद को महफूज बनाने के लिए नज़रसानी शुदा ऐवान शाही कानून मंजूर कर लिया है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके ख्याल में इस तरमीम को अवामी हिमायत हासिल हुई है, 3% ने कहा कि इसने काफ़ी हिमायत हासिल की है, जबकि 26% ने कहा कि इसे किसी हद तक हिमायत हासिल है। 41% ने कहा कि इस तरमीम को ज़्यादा हिमायत हासिल नहीं हुई और 23% ने कहा कि इसे बिल्कुल हिमायत हासिल नहीं हुई है।

0: 腸にいいんですよ。
1: これ生卵ですか？
0: はい。
1: すみません、私生卵は食べられません。
2: そう、じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆大好きです。
3: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: アラブカノケ食品カイトキマシフロンカカーナル、アシカモズジャパニナシタヘ。
5: हीरा, जापानी नाश्ते से आपके जहन में कैसा नाश्ता आता है?
4: उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह, यानी बिल्कुल इस सबक के मकामे वाला मंजर।
5: आपने रिवायती जापानी नाश्ते की बिल्कुल दुरुस्त मंजरकशी की है। बाज लोग खमीर लगे हुए सोयाबीन से तैयार करदा नत्तो, खुश्क खुर्दनी समुद्री नबातात, आलूचे का अचार या अंडे भी खाते हैं। आज के मकालमे में कच्चे अंडे का जिक्र था, लेकिन जापानी अंदाज का आमलेट भी आम है।
4: वैसे आजकल जापानी लोग मगरबी अंदाज का नाश्ता भी तो करते होंगे।
5: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है।
4: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
5: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं। कई होटलों में बुफे सर्विस भी होती है, जिसमें मुकर्रर पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं।
4: फिर तो मेरे लिए बुफे सर्विस बेहतर है, इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं।